0: बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अजकल जो जिहड़ी साडी पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, बड़ा ही टाइम वेस्ट कर रही है इंटरनेट दे नाल, मोबाइल्स दे नाल, बड़ा ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा उन्हां दा,
1: हाँ जी
0: जेहड़ा कि इस दे नाल की है कि एक तां ये चीज सानू जेहड़ी साडी नवी पीढ़ी, जेहड़ी साडी अडोलसेंट स्टेज है,
1: हाँ जी
0: जेहड़े मतलब अपने 10वीं 12वीं दे बच्चे हैं, इन्हां नू समझाउण दी जरूरत है एक प्रॉपर, कि
1: बिल्कुल
0: उन्हां लई
1: जी
0: केहड़ियां चीजां सही ने, केहड़ी एप्स अच्छियां ने, जेहड़ियां ओह यूजफुल तरीके दे नाल यूज कर सकदे हैं और अगे वध सकदे हैं,
1: हाँ जी
0: उन्हां नू ये समझाउण दी जरूरत है कि ओह किदां इस मोबाइल दा यूज करके या इंटरनेट दा यूज करके बहुत ही अच्छियां चीजां लभ सकते हैं या कर सकते हैं, जिदा कि कोई भी असी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं मोबाइल इंटरनेट दे थ्रू, बहुत सारियां चीजां ने जिहड़ियां सानू यूट्यूब दे उपर या फिर डिफरेंट डिफरेंट एप्स दे उपर सानू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जांदियां ने, रीजनिंग हो गया या फिर कोई भी करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है या कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, तां वो असी बिल्कुल अच्छे तरीके दे नाल फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट की सहायता दे नाल असी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल जी
0: ते जिद्दां कोई नवियां पोस्टां निकलदियां ने,
1: हाँ
0: अगर
1: जी
0: साडे कोल इंटरनेट अवेलेबल है, फोन अवेलेबल है, तां असीं ओह फाइंड आउट कर सकदे हां कि केहड़ियां पोस्टां निकलियां ने साडी क्वालिफिकेशन दे अकॉर्डिंग, अगर सानूं कोई मिल जांदी है तां असीं उस नूं अप्लाई कर सकदे हां। इस तरह नाल मतलब जो इंटरनेट है इस दे बहुत ही यूजफुल तरीके ने इस नूं यूज करन दे, बट अगर असीं टाइम वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट करन दे नाल इस घंटे घंटे बिता देना, बैठे रहना, चैट करे जाना या फिर कुछ भी बस देखे जाना, तां इस दे नाल बेसिकली तां कुछ नहीं होना,
1: बिल्कुल
0: फ्यूचर
1: जी
0: तां बिल्कुल तुहाडा अग्गे नहीं जा सकदा हैगा। इस दे नाल की होना है कि तुहाडा अपना टाइम ही वेस्ट होना, प्लस तुहाडी स्टडीज दा नुकसान होना है, ते मोर ओवर तुसीं ओह जिहड़ा इन्ना अच्छा यूजफुल टाइम, जो इन्ना प्रीशियस टाइम तुहाडे कोल है, वो कदी वापस नहीं आना, तां ओह
1: हाँ जी
0: वेस्ट हो जाएगा।
1: हाँ, इस तरह आपां
0: हाँ
1: देखते हैं वेब चैनल बहुत बने हुए ने गे,
0: हाँ
1: बहुत
0: जी
1: सारे वेब चैनल है, यूट्यूब चैनल ने गे, वो चैनलों के राही भी बहुत सारे नौजवान जोड़ा हैगा
0: हाँ जी
1: कमाई कर रहे हैं।
0: हाँ बिल्कुल, कमाई दे जो रोजगार दा जिदा तुसी कह रहे हो, जिदा कि बच्चियां दे विच ना बहुत अच्छियां क्वालिटीज होंदियां ने, कई बच्चे ना बड़ा अच्छी क्वालिटी, कोई बच्चा अच्छी सिंगिंग जानदा है या
1: हाँ
0: कोई
1: जी
0: बच्चा अच्छा राइटर हुंदा है, ठीक है, कोई बच्चा अच्छा स्पीकर हुंदा है, तां डिफरेंट डिफरेंट हर एक पर्सन दे विच एक यूनिक क्वालिटी जो कुदरत ने पाई है वो हर एक पर्सन च है,
1: बिल्कुल
0: बट बच्चे की है, बच्चे नू उसनू पहचानना चाहिए, अगर वो पहचान लेंदा है उसनू, तां जिद्दां वो अगर उसने सोशल मीडिया दे थ्रू, अगर वो सोशल मीडिया नू इन्ना ज्यादा लाइक करदा है, तो इसनू अपना रोजगार बना सकता है, किद्दां जिद्दां वो अपने सोशल मीडिया ते अकाउंट बना लिया उन्हें,
1: हाँ जी
0: ते उस अकाउंट दे विच वो अपनी वीडियोस पोस्ट कर रहा है, ठीक
1: हाँ
0: है,
1: जी
0: अपनी कोई भी क्रिएटिविटी, अगर उसमें कोई पेंटिंग आंदी है तो अपनी पेंटिंग, कोई भी अपनी पेंटिंग बना के, या फिर कोई अच्छा कुछ भी, कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है या फिर कुछ
1: हाँ
0: भी
1: जी
0: कोई अच्छी चीज उस दे विच बना के पोस्ट करे जा रहा है, तो उसनू लाइक्स आंदे हैं, तो उस दे नाल उसनू उसदी इनकम दा सोर्स भी वो एक तरह नाल जो सोशल मीडिया है उसनू बना सकता है।
1: बिल्कुल हाँ जी, जिस तरह कोई जिहड़े हैगे अपने आले दुआले बहुत सारियां इहो जिहियां गल्लां हुंदियां ने, इहो जिहे कम हुंदे ने जिन्हां बारे असीं जानकारी दे सकदे हां वी साडे एरिए दे विच आह कम हो रहे ने,
0: बिल्कुल
1: उहनां दे वीडियो
0: बिल्कुल
1: बणा के जां असीं
0: हाँ
1: होर
0: जी
1: जानकारी प्राप्त करके उहनां बारे
0: हाँ जी
1: वीडियो बणा के वी पा सकदे हां।
0: बिल्कुल
1: ते
0: बिल्कुल
1: इक मेरे ख्याल दे विच नौजवानां नूं इह वी नहीं पता कि जिहड़ा यूट्यूब है जां फेसबुक है, इस तरह दियां कई ऐप्स हैगियां ने जिहड़ियां उत्थे अकाउंट बणा के कम करन वालियां नूं पैसे भी दिंदियां ने।
0: हाँ बिल्कुल
1: हाँ जी इहदे बारे वी जे तुसीं थोड़ी विस्तार च गल करो तां वधिया होवेगा।
0: इस दे विच ये है कि देखो जिदा मैं तुहानू पहले ही कहा, जे अगर तुसी कोई अच्छा काम कर रहे हो
1: हाँ जी
0: तां उस नू लाइक्स, ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, तो ज्यादा लाइक्स मिलन वालियां जो भी वीडियोस ने जा जो भी है, तां
1: जहाँ
0: उहनां
1: उन्हें
0: नू
1: व्यू ज्यादा होंगे हैं
0: हाँ जी व्यूज ज्यादा होंदे हैं, तां वो उहनां नू हायर भी मतलब उहनां नू एडवरटाइजमेंट लई यूज भी करदे हैं,
1: हाँ जी
0: हाँ जी, ओहदे विच कोई अच्छे प्रोडक्ट दी एडवरटाइजिंग दे लई ओ यूज करना है अगर किसी ने, तां वो एडवरटाइजमेंट पाउण वाला तुहानू पेमेंट करेगा और अपनी एडवरटाइजमेंट उहनां दी वीडियोस वगैरह दे विच पाणी शुरू कर देंगे,
1: हाँ
0: तां
1: जी,
0: इस दे थ्रू भी तुहाडा इनकम दा सोर्स जो है जनरेट हो जाएगा एक।
1: साडे नौजवानां नूं इह वी दस्सण दी गल है, देखो वी जिहड़े कलाकार ने उह आपस दे विच इक दूजे नाल विवाद छेड़दे आ, इस तरह दीआं गल्लां करदे आ, इक दो कलाकार जिहड़े इक दूजे दे विरुद्ध बोलदे ने ते नौजवान उहनां दी हाँ च हाँ मिलाउंदे, उहनां दे पिछे लड़ाई झगड़े करदे ने, पर उहनां दे व्यू वधदे ने, उह सिर्फ इस चीज़ दा फायदा।

हाय वे मेरी हाड़ा वे मेरी जान सुक दी चन चंद्रा जदों भी चढ़ आवे हाय वे मेरी जान सुक दी तक दियां रहिंदियां ने रामा नित तेरियां है रामा नित तेरियां रो रो के पीछे गईयां अखां दोवें मेरियां वे अखां दोवें मेरियां तक दियां रहिंदियां ने रामा नित तेरियां है रामा नित तेरियां रो रो के पीछे गईयां अखां दोवें मेरियां वे अखां दोवें मेरियां गल सुन दिल धारा तेनू कहना नी दुबारा गल सुन दिल तारा तेनू कहना नी दुबारा हुण होर ना जो

के सुटते प्यार वफा सब जड़ तो पुटते, पीछे कौड़ी पजदा फिरदा पता न कोई पलदा ए, जदो समय दा चक्कर चलदा ए, जदो समय दा चक्कर चलदा ए, लेखा लिखिया मेट न सकदा, हो लेखा लिखिया मेट न सकदा, की होना कल वेख न सकदा, ताही हिरदा दुखड़े चलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए, शरण जीत प्रेम हुण विकदा ए, शरण जीत हुण प्रेम विकदा ए, नैणे हंजू सच लिखदा ए, तुर दरगाहे लेखा देना तख्त हिजरे दा हलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए।

0: फिर वही सरहदों की खींचातानी की, हमारे 400 पड़ी हैं लकीरें। फिर वही सरहदों की खींचातानी की, हमारे 400 पड़ी हैं लकीरें। देखो पंछी गीत सुनाते पथ से उस पार सरहद के जा रहे हैं। बंद काल कोठड़ी के तंग एक शेख में से, बंद पड़ी काल कोठरी के तंग एक शेख में से, जब उड़ते हुए सारसों को मैंने देखा, तब ए आजादी तड़प तुम्हारी मेरे मन को बेकरार करने लगी। फिर से आँख में बर आया पानी, सो आखिरी बंद है। फिर से आँख में बर आया पानी, जहन के क्षितिज पर बेदाग तस्वीरें। फिर से आँख में बर आया पानी, जहन के क्षितिज पर बेदाग तस्वीरें। दहलीज पर मुंतज वो बूढ़ी आँखें अशकों के बीच थी रमने लगी। आओ अपने देश अब यारो, वापस लौट चलें वो देखो, पंछी अपने घोंसलों की ओर चोग लिए हुए वापस लौट रहे हैं। सो धन्यवाद।
1: हरप्रीत सफरी तो बाद हूँ मैं सदा देन जा रहा, जिला शहीद भगत सिंह नगर दे पिंड रायपुर डब्बा दे विच वसदी साडी शायरा प्रोफेसर रूबी रायपुरी जी नूं। रूबी रायपुरी जी अपने प्यारे पिता बारे एक कविता लैके हाजिर हो रही है। एक कविता उसकी अंग्रेजी दे विच लिखी हुई है। रूबी रायपुरी जी थोड़ा स्वागत है।
2: शुक्रिया हरबंस अंकल जी। आवाज़ दी दुनिया दे दीवानियां नूं मेरी दुआ सलाम, सत श्री अकाल सारियां नूं। मेरी अज दी पोएम है जो उहदी जुबान तां अंग्रेजी दे विच है, पर जिवें कहा जांदा आ कि इमोशंस दे या भावनावां दी कोई जुबान नहीं हुंदी, सो उहदे लई सिर्फ भावनावां दा होना ही लाजमी हुंदा है। सो मेरी अज दी पोएम जिहड़ी आ उह वी कुछ एवें दी है, है अंग्रेजी दे विच है। सो उम्मीद करदी आ कि तुसीं सारे गौर फरमाओगे। इहदा टाइटल है जी माई फस्ट लवर। वंस अपॉन अ नाइट इन द मिडनाइट मॉर्निंग, समवन केम क्रॉलिंग टू माई माइंड। वॉट इट वॉज अ ड्रीम? नो वे। हाउ कुड अ ड्रीम बी इन ओपन आईज और अ डे ड्रीम? देन हाउ कुड इट बी ड्यूरिंग नाइट? What it was then? A touch? A touch? Of what? Whose presence lingered in mind this time? Was it my thought? Embraced someone? How did he scrawl? How did he stroll? Lonely in my memory lane. He pampered my hair calmly, and I held his hand. Embraced him, so his skeleton moved. As usual, he didn't fold his arms around me. It might be my lover, the very first, who didn't leave me lonely in dark world. He, my loving heavenly father, my first lover ever. Oh, a day of a ray of dawn, and he was gone, and he was gone once again forever, my loving father, my heavenly lover. Thank you.
1: Rubi Raipuri to baad hun main sada den ja reha Babli Sohota ji nu. Babli Sohota ji apne man diyan gallan jehdiyan bahut pyariyan rachnaman de vich pro ke ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਬਲੀ ਸੋਹਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ।
3: ਮੈਂ ਰਵੰਸ ਰਿਹਾ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ

तेरे ते दा एहसान सारी जिंदगी मैं ढोआ, तेरे हासिया च हसा, तेरे रोने च रोआ।

0: गा।
1: बहुत
0: तो एक जो लास्ट वाला
2: थैंक यू
0: गाऊंगी
2: जी,
0: ना,
1: थैंक यू जी, बहुत
0: नहीं
1: बहुत शुक्रिया।
0: एक
1: हाँ
0: नहीं
1: जी,
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं एक लाइन हो रहा है
2: नहीं
0: जी।
2: नहीं वो सिकंदर
0: मेन
2: क्या
0: लाइन
2: था
0: हो रहा है
2: जिसने
0: कि
1: जी
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मेन लाइन रहेगी। ओके ना,

बस दुख तकलीफां भोगणियां दिन में जिंदा कर गई मैं मर जानी मैं उस दासी मेरे निकारी मैं उस दी पढ़ दी बाणी।

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। असी दिन रात

मारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले। तारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख।

0: Westport Kitchen Cabinets LDD Custom Kitchen Work Custom Kitchen Cabinets Entertainment Units Fire Placement Vanities and Bars We do whole renovation Contact us on office.bestwood@gmail.com or call Vic Parage 604-377-1092 British Columbia Westwood Kitchen Cabinets LDD
1: Chicago's Pizza with a Twist in your town 8300 Sierra College Boulevard Roseville, California Wet and non-wet pizzas Home delivery available with one phone call 1-916-791-0102 Open every day Chicago's Pizza
2: के कवि तेरे सोये नु बुरा ना बोलिए हम पढ़ लिए तकड़ी ता पूरा तो लिए और जिन्ना चिर करे ना ले आइए डोले नू के बैजा कर छड़िए बचोले नू के बैजा कर छड़िए बचोले नू सत श्री अकाल जी मैं तुहाडा अपना गुरजीत जीती ते तुसी सुन रहे हो दुआबा रेडियो तुहाडी अपनी आवाज़।

की जब जब रात सुहानी आग लगाएगी रुत मस्तानी, तू ही बता कोई कैसे जिएगा। दिल के मारों को दिल के मालिक ठोकर लगा कर चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके

किसके लिए दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दी। रूठे रहेंगे आप जो हमसे मारे जाएंगे हम भी कसम से, सुन ले हाथ छुड़ाने से पहले।

यूं अगर तुम दिल की तमन्ना को मिटा कर चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके

मेरा पहला या ते आखरी सवाल तेरे अगे, मेरे हथाई उत्ते मेहंदी किसे होर दी ना लगे, मेरे हथाई उत्ते मेहंदी किसे होर दी ना लगे, साढ़े

0: मैं उसको भूल जाता हूँ, भुला कर याद करता हूँ। मैं उसको भूल जाता हूँ, भुला कर याद करता हूँ। जी शमी भाई जी,
1: क्या बता क्या बता जी, मैं लहर बहर करती जी, बहुत ही खूब बहुत ही खूब, भाग
0: मैं उसको भूल जाता हूँ, भुला कर याद
1: याद
0: करता
1: करता हूँ।
0: हूँ।
1: एक ना मतलब कितनी
0: जमाल
1: बढ़िया आहार है,
0: जमाल हसनपुरी का शेर है, बहुत कमाल लिखा
1: बहुत
0: हुआ
1: कमाल, बहुत कमाल है
0: गजल।
1: जी जी
0: मैं उसको तो याद करने वास्ते भुलना भी तो जरूरी होता है ना, उन्हें तो क्या मैं उसको भूल जाता हूँ, भुला
1: अरे
0: कर याद
1: ये याद
0: करता
1: जी भुले ही नहीं, फिर
0: हूँ।
1: याद भी की करना जी, बिल्कुल गलत हो ही, टेक्निकल
0: बिल्कुल
1: मामला है।
0: बिल्कुल बड़ा टेक्निकल मामला है, कई बार
1: बिल्कुल
0: ना कोई कोई भी एवं रेड़ी जाता पी के, ये पी के रेड़ वाला कम नहीं है।
1: वो तीर चल रहे ने मिशीगन तो भी ते गिदड़ बाहे तो भी, मतलब वो उन्हें गल करते हैं असि, मतलब निटारदे नहीं भाई, उधर कहते भी नहरियां पूरियां
0: नहीं नहीं कोई गल नहीं, मैं ना मेरे मेरे तो बिना सारे दी हौसला अफजाई करते ने सारे सज्जन, तीर कले मेरे ते चलते ने, हुण ये नहीं पता क्यों चलते। मेरी कोई हौसला अफजाई नहीं करता भी यार वाकई तू वधिया सुनाया है,
1: नहीं
0: मेरे ते
1: बहुत,
0: कले तीर ही
1: नहीं कले
0: आउंदे
1: तीर
0: ने,
1: नहीं,
0: पता
1: तीरां
0: नहीं।
1: दे अगे फुल लाके छड़े हुए ने, मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है काम, ये फुलां वाले तीर ने,
0: ए
1: फुलां दी
0: हुण
1: बारिश हो रही है।
0: ए ए ते हुण मैं समझ सकता हूँ सज्जना दे तीर ने, वही गल है।
1: देख लो यकीन नहीं
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लिखे तो औजला
0: बिल्कुल
1: साहब ने ये भी उत्ते भी जसी जी ने कोई कमेंट किया थले, वो लिखते ही कहते भी वो कहते जसी वीरे वो दोस्त ही केड़ा जिहड़ा मुसीबतां च काम ना आए। मैं पता की पढ़िया पहला कि जसी वीरे वो दोस्त, वो दोस्त ही कहदा है भी जिहड़ा मुसीबतां ना बधावे।
0: क्या बात है क्या बात।
1: जी
0: नहीं, वो ऐ है ना तो तीर दे अगे फुल लगे ने, तो फिर वो कहंदा सी ना कि कहंदा सज्जना ने फुल मारिया मेरी रूह, वो की कहंदा सी अंबरां तक
1: अंबरां तक
0: उमरां तक रोई
1: कुरलाई, अंबरां तक कुरलाई,
0: पता नहीं।
1: बिल्कुल
0: ये फुल भी बड़े बड़े बड़ा दुख देंदे ने उसे गल। चलो कोई गल
1: लपेट
0: नहीं,
1: में
0: सज
1: धीरे जी।
0: सज्जन प्यारे ने कोई गल नहीं, जिवें उन्होंने ठीक लगता उवी उन्हां वो लिख
1: बिल्कुल जी
0: देंदे ने, तो उन्हां
1: बिल्कुल
0: दा
1: जी
0: दिलों प्यार सत्कार है भाई जी, जो जिवें ठीक लगता है।
1: सही गल है जी,
0: तो ना गल मुकदी है भी रहनी चाहीदी है शांति, वो राज फिल्म दा एक गाना सी, मैनूं उहदा पहला पैरा तो याद है छोटा जिहा,
1: ठीक है जी,
0: ते वो जिहड़ी आई सी दीनू मोरिया ते बिपाशा बसु दी,
1: बड़ा मन ने मैं भूतनी फिरती सी उधर भज्जी इधर उधर
0: पूरी
1: वो, हाँ
0: पूरी
1: जी
0: हाँ हाँ ये

0: मजा नहीं अल्लाह दी। हार वाला, तार
1: जी
0: वाला, तार
1: तार वाला,
0: वाला।
1: ठीक
0: लिखे मूसा पड़े खुदा। मजा नहीं अल्लाह।

मैनू जानी ना तिला भौकर बन के हूं जदेऊ जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊ जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊ मैं पखियां दी झल नहीं

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। असी दिन रात

अपने वीरां नाल माए रल के मैं रहिंदी सी, तेरे घर बैठी माए दस तेनू की कहिंदी सी, जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने

एक ऐसा फर्ज निभाया तू, सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मोह कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। छड़ चली अज माए, छड़ चली अज माए, बाबले दी गली में, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में। छड़ चली अज माए, बाबले दी गली में, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में, हुन साम के रख ले माए, हुन साम के रख ले माए, मेरे गुड़िया पटोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। तेरे की करा महल चुबारे माए, तेरे की करा महल चुबारे माए, जिथे मेरे जोगी था नहीं, जिथे मेरे जोगी था नहीं।

जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई, जे संतरी जांदे ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, की करां जे आपे चे, की करां जे आपे चे।

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादियां चे डुब गई, जिंद वादियां चे डुब गई जे संतरी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिस चेर तेरा ऐ जिस्म लोहा हुंदा लाखा नहीं, जिस चेर तेरा ऐ जिस्म लोहा।

0: मिलया आफ तो चल दे रहे हस के कदे सिदक ना साडा डोलिया जी फट किरत ते से अस्त ने रज लाए साडा सबर जबर ने रुलिया जी।
1: दुआबा रेडियो दे प्यारे श्रोतियो, हुण असीं तुहानूं इक वार कनेडा लै के जा रहे हैं। कनेडा दे विच साडी शायरा रहिंदी है बलवीर कौर ढिल्लों, जिहदी कविता कह रही है भी इंसान जिहड़ा ओह कुदरत दी रजा दे विच रहिंदा है, कुदरत नाल मिल के रहिंदा है। ते ओह किवें कहिंदे ने, की कहिंदे ने, आओ उन्हां तों सुणीए। बलवीर कौर ढिल्लों जी, तुहाडा स्वागत है।
2: ਦੇਖ